परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 8553-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल

खाण दान थोड़ा पापी पीण दान वो जिंद जांदी है खुराक नाल फल दी जिंद जांदी है खुराक नाल फल दी मैं भी कड्डा डंड बैठ का जदों मारदी फड़ा।

0: दर्शन सिंह खक प्रवास रेडियो न्यूयॉर्क फ्रैंकफोर्ट तो थाडे नाल
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां थाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक प्रवास रेडियो फ्रैंकफोर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफोर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो थाडे नाल रूबरू हो रहे जी ते अज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हां थाडे नाल सो तुहानू पता कि एक दिन छड के ते दूसरे दिन असीं प्रोग्राम करदे आं जिदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दियां दुनिया दियां खबरां लैके तुहाडे नाल रूबरू हुन्ने आं ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधु सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह ओह दिंदे आ जिदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे आ क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे आ जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करते इंगलिश च भी करते अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करते आ सो टाइम मिले ते ओ प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दियां वीडियो ते फेसबुक भी दे ते फेसबुक ते लाइव भी हुंदे आ सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दी आ कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चोणवें कोशिश करी दे आ कि कोई वधिया गीत कल्चर गीत जिहड़े जिहदे विच वैगलर ना होवे जिहदे विच इहो जिहा शब्द वाली ना होवे ओह असी कोशिश करी दी है तुहाडे तक पहुंचाउण दी सो लो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आ जी किरपा होगी तेरी मालका ए बाबा गुलाब सिंह जी

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल्ली।

नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज परवाज रेडियो मैं हां ताडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक नमस्ते अदाब दोस्तों तुसी सुन रहे हो भैनों ते भरावो परवाज रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम न्यूयॉर्क।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 858-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खट्टे नाल रोजाना सुनो।

नमस्ते, सलाम अलैकुम। जिन्हें भी श्रोते वीर भैन भरा साडे नाल जुड़े ने या जिन्हें बाद च भी जुड़ना, उन्हां सारयां दा जी आयां नूं वेलकम। और अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी दिल दी आवाज प्रोग्राम न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टूडियो तो लैके थाडे नाल हाजिर हो गए जी। ते लो जी, तुबद आपां करदे हां जी।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट

गुरु सवारे सत्कारयोग गुरु खालसा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नाम देव गुरु सिख संगतां वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दे दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते पावन चरण कमलां ते कौतकां राहीं पवित्र होई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ ते 300 साला साजना दिवस दी स्वयमान परी याद नूं सदीवी बनाउण लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स दी उसारी दा आरंभ कीता जा रहा है। इस धरती नूं 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी दी याद विच चक माता नानकी दा नाम दिता है। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र दे गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर पर आए कश्मीरी पंडितों की बेनती से समुची मानवता विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार समाजिक आजादी बरकरार रखने लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों 9वें पातशाह हजूर का गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया सी। इस पिछों तो लासानी रूहानी कौतकों की झड़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखा नूं अणख गैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करने उपरंत गुरु दर तो आनंद प्राप्ति की रीझ रखने वालिया ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा दसम पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। वह पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमई जिंदगी जीव सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पावर राही सीस भेट करन वाले 5 गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आं, आप उन्हां अगे सीस नवाउंदे आं, आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालिआं नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदिआं होइआं इह वचन उचारे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे। इसे गुरु खालसा पंथ दे बोल वाले इस पंथ राही सरबत दे भले दे कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुर्बान कर

हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, हाँ तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों आज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी, ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे घट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उन्हां दे विचों एक है जी, ते अज असीं उन्हां दे मुखार बिंद तों श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ तुहाडे नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हन।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856

नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज परवाज रेडियो मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते सलाम अलैकुम जिन्हें भी श्रोते वीर भैन भरा साडे नाल जुड़े ने या जिन्हें बाद च भी जुड़ना उन्हां सारयां दा जी आयां नूं वेलकम और अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी दिल दी आवाज प्रोग्राम न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टूडियो तो लैके थाडे नाल हाजिर हो गए जी ते लो जी तो बस आपां करदे हां जी

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे साथ तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट

0: خاص پروگرام جڑا تھڈے تک اسی پہنچا رہے ہیں.
1: بڑے پیار ستکار نال سات شری اکال. اور اسی اس شہیدی پندرواڑا جو دسمبر دا آخری دو ویکا ہے اس سبندھ وچ واپریاں سکھ اتہاس دی گھٹناواں دا ذکر کر رہے ہاں. اور انہاں گھٹناواں دا ذکر کرتے ہوئے کل اساں اے گل کہی سی आनंदपुर साहब दे किले तो निकलन दे कारण दी गल व्याख्या कीती सी असी. और एक सज्जन ने भी कहा सी भी ओदे होर भी कारण हो सकते ने या महासंघ दे संबंध च जदों असी गल कीती सी उन्होंने भी कहा सी भी होर कारण हो सकते ने. बस क्योंकि मैं तो इस गल दा वैसे ही हामी हां कि हर गल तर्क संगत होनी चाहिए कि की हो सकती कि नहीं हो सकती या इहदे विच कुछ होर भी हो सकता है.
2: बिलकुल डॉक्टर साहब.
1: हां जी, जब तक असी वन साइडेड होके किसी गल नूं विचारदे आं भी मैं ही ठीक हां, उस वेले असी गलती कर रहे हुंदे आं.
2: बिलकुल
1: बिलकुल. और इस गलती दे संबंध विच कल मैं उस तों बाद फिर होर भी इतिहास दी फरोला फराली कीती और उस दे विचों कुछ होर इहो जिहियां बड़ियां अचंभे वालियां गल्लां निकलियां कि जिहड़ियां मैं समझदा भी साडा सिख इतिहास अगर सुनेगा तो एकदम अचंबा होएगा या मनन तैयार नहीं होएगा
2: जी.
1: एक सज्जन ने इतिहास दे विच लिखा आया भी साडे को जिस तरह नील नदी दी घाटी नील नदी है ना
2: जी जी बिल्कुल.
1: नदी दा 4000 साल पुराना रिकॉर्ड साइंसदाना ने इकट्ठा कीता होया कि एदे च कदों चढ़ा आउंदा है कदों उतरा आउंदा है किस किस तरह एदी जिहड़ी क्रिया है ओह चलदी है. नील नदी जिहदे च जहाज भी समुद्री जहाज भी चलदे आ
2: जी जी. मिस्र दे विच जी
1: सुनिया होना ओदे बारे ज्यादा जी. इसे तरह करके एक सज्जन ने कल उस फरोला फराली दे विचों मैनूं इह मिलिया भी लिखिया भी साडे कोल पिछले 200-300 साल दा रिकॉर्ड मौजूद आ कि उस समय दे विच जिहड़ा समा असी दसंबर दे दिनां दी गल कर रहे हां उस समय दे विच उत्तरी भारत दे विच किते भी हड़ नहीं सी आउंदे. नदियां इनिया भरिया हुई नहीं सी हुंदियां जिस तरह का बिरतांत सिरसा नदी का सिरज दिता गया है
2: जी.
1: ए मतलब ए भाई जे सिरसा नदी उस वेले चढ़ी हुई नहीं सी जे ए गल कही जावे भी सार्थक नहीं हैगी ता फिर अल्टीमेट शहीदियां ते हुईयां ने ना.
2: बिलकुल.
1: ओदे पिछे सानू कुछ होर लभना पेगा सानू कुछ होर वेखना
0: पेगा. गुरदीप सिंह संधू साहब जुड़नगे ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ. ਦੋਸਤੋ ਆਜੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ. ਲੋ ਜੀ

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खास पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3059 and 856-397-0301 855-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खत पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 एंड 856-397-0301
1: 8553-97-0301 दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज न्यूयॉर्क तो न्यू जर्सी तो यूएसए तो मैं हां ताड़ा दोस्त होस दर्शन सिंह खक तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी सो आज दे प्रोग्राम दी शुरुआत हो रही है जी थाडे नाल रल मिल के प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं ओ बड़ा सत्कार जो सारे वीर भैन भरा इस प्रोग्रामा विच जिन्ना भी साथ दिंदे ने सुनदे ने प्रोग्रामा नूं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद दोस्तों तुसी फोन कर सकदे हो जदों भी थाडा दिल करे और प्रोग्राम दे पहले अद्धे घंटे विच असीं गीत लाउने उहदे विच तुहाडी कॉल भी आ सकदी कोई मसला नहीं उस तो बाद फिर प्रोग्राम चालू हो जांदा जी खबरां दा तो फिर डॉक्टर साहब दा फिर आपां कॉल उहदे विच नहीं लै सकदे सो जे तुहाडा दिल करे तो तुसीं अपने कॉल जिहड़ी है हुण तो लैके अद्धे घंटे तक विच विच तुसीं कर सकदे हो सो लो गीतां दे नाल शुरुआत करदे हां जी ते मेरा फोन नंबर तुसी जे कॉल करनी होवे ते अमेरिका दा नंबर है जी 732-874-3259 दे उपर तुसी कॉल कर सकदे हो दूसरा नंबर है जी 856-397-0301 सो ये अमेरिका दे नंबरां दे उपर तुसी कॉल कर सकदे हो बड़ा शुक्रिया धन्नवाद मेहरबानी लोग ही सुनदे हैं जी अपना एक लो

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301
1: नमस्ते आदाब दोस्तों तुसी सुन रहे हो।

0: गुरु सवारे
1: सत्कार योग गुरु खालसा जीओ
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: अज दाए 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नाम देव गुरु सिख संगत वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते पावन चरण कमलां ते कौतकां राहीं पवित्र होई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ ते 300 साला साजना दिवस दी स्वयमान परी याद नूं सदीवी बनाउण लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती नूं नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद विच चक माता नानकी का नाम दिता है। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र दे गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर पर आए कश्मीरी पंडितों की बेनती से समुची मानता विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार समाजिक आजादी बरकरार रखने लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों नौवें पातशाह हजूर का गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया। इस पिछों तो लासानी रूहानी कौतकों की चढ़ी ही लग गई। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखा अणख गैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करने उपरंत गुरु दर तो आनंद प्राप्ति की रीझ रखण वालिया ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा दसम पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। ओ पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमय जिंदगी जीव सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सन 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पावल राही सीस भेट करन वाले पंज गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आं, आप उन्हां अगे सीस निवाउंदे आं, आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालिआं नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदिआं होइआं ये वचन उचारे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे। इसे गुरु खालसा पंथ दे बोल वाले इस पंथ राही सरबत दे भले दी कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुर्बान कर

दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो ताड़े नाल रूबरू हो रहे हैं जी ते आज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं ताड़े नाल सो तुहानू पता कि एक दिन छड़ के ते दूसरे दिन असी प्रोग्राम करदे हां जिहदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दियां दुनिया दियां खबरां लैके ताड़े नाल रूबरू हुन्ने आं ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह ओह दिंदे आ जिहदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे आ क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे आ जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करते इंग्लिश च भी करते अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करते आ सो टाइम मिले ते ओह प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दियां वीडियो ते फेसबुक भी दे फेसबुक ते लाइव भी हुंदे आ सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दी आ कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चोणवें कोशिश करी दे आ कि वधिया गीत कल्चर गीत जिहदे विच वैगलर ना होवे जिहदे विच इहो जिहा शब्द वाली ना होवे ओह असी कोशिश करी दी आ तुहाडे तक पहुंचाउण दी सो लो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आं जी कृपा होगी तेरी मालका ए बाबा गुलाब सिंह जी

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम।

0: गीत और सुन दे जी सिंधु शिंदा
1: साहब। भाई बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले भाई, आज तो नजारा आ गया भाई।
2: देखो ना जी कितनी सोनी जन लेके आया।
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया। वो ताली जेतों वाले ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई, जिंदा बहुत बैठा बैठा हो जाए
2: मालको ला दें।
1: भाई वाह वाह वाह वा।